0: 差不多。
1: Listening to Link FM. Assalamualaikum, मैं नईम अजहरवी और तुम सुन रहे हो Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114-308-2727 or visit us online, naziersolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions.

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।

0: You are listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0333-0057-1009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या द क्लेम टीम डॉट यूके पर तलाश करें
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects

0: 0749 299 729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway.
2: Keep you coming back for more.
1: Jiske khane ke liye. nayabsonline.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्राइन गड्डी ना एक्सीडेंट होई गया है ते द क्लेम टीम तुसने खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम ते गिरदोन वाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 0330057100009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM.

अस्सलाम वालेकुम सलाम, आप सुन रहे हैं ब्लिंक एफएम 96.7 एफएम और इस वक्त सुबह के 5:02 हो जाते हैं और खबरों के बाद बिल्कुल ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग होता है लेकिन मैं हर रोज जो है वो आपका और मेरा साथ होता है और आज भी साथ रहेगा। चलते हैं प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत कलाम के साथ।

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब

फैसल याकूब सुल्तानी और ये क्वाली स्पेशल, और इस क्वाली स्पेशल में हमेशा हम आपको मुख्तलिफ कलाम सुनाते हैं, और अब ब्रेक के बाद चलते हैं अगले कलाम की तरफ।

0: with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
1: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07809 568233 or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
2: लो जी सुनो जी आई गए खान कैटरिंग वाले खान कैटरिंग राधरम जिन्होंने मजेदार खानियां ना कोई जवाब है नहीं एक बारी अजमाई के तको शादी ब्याह सालगिरह मानिया मेहंदी और दिगर तकरीबात आस्ते एक महंगाई ने दौर विच सस्ता ता मजेदार खाना आर्डर पर बनवाई सकने हो एक और भी गल बुझो खान कैटरिंग राधरम वाले पूरे साउथ यॉर्कशायर विच कैटरिंग नी डिलीवरी भी करने आर्डर निका होया या बड़ा ऑलवेज वेलकम खाने ने आर्डर वास्ते भाई इफ्तिखार की फोन करो या व्हाट्सएप पर رابطہ करो 07931737547
3: या 07784850934.
4: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11am till 2pm. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.
5: मौत मेरा साया है जोया, वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ी। जोया हम गटर में पले हैं, गटर में ही जिएंगे और गटर में।

इस वक्त आपकी और मेरी बात नहीं हो सकती, तो कोशिश किया करें कि अगर कहीं भी आप, अगर आपको कोई ख़ास कलाम सुनना है तो आप मैसेज कर दिया करें, ताकि वो हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके लिए शामिल कर लेंगे जब हम दोबारा रिकॉर्ड करवाएंगे। ब्रेक के बाद अब चलते हैं, सिलसिला जारी रखते हैं और चलते हैं अगली कवाली की तरफ।

यकीनन आपको मजा आएगा ये कवाली सुन के। और यकीनन कवाली जो होती है अक्सर उसमें, जैसा मैं उस दिन भी बता रहा था कि मैसेज होते हैं इसमें बड़े खूबसूरत, और बड़ा खूबसूरत जो है वो अंदाज में एक आखारी का एक अलग तरीकाकार होता है, जैसे कि गाने को गाना गा के उसमें जो है वो अपनी जो कैफियत है उसको बयान किया जाता है, इसी तरह कवाली के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो अब चलते हैं अगले कलाम की तरफ, सुनते हैं, इंजॉय कीजिए।

0: are listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
2: Mizzier Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, mizziersolicitors.co.uk. Mizzier Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield

हमारे यहां यही तौहीद का तसव्वुर है, हमारे यहां यही तौहीद का तसव्वुर है। बगैर जिस्म के वो लामकान बोलता है।

0: Everywhere you go, Link FM is...
1: मैं हूं अली अब्बास और आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7 एफएम।

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।

一茶壶，没大妈。

गदा बनकर अपनी इंतहा हो जब तू है जब पयाम उसका फिर पयाम क्या तेरा तू है जब सदा उसकी आप बेसदा हो जब

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tu sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busy solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. The Zia Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield

0: 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway.
2: Keep you coming back for more.
1: Jiske khane ke liye. nayabsonline.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्लाइंट की गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है तो द क्लेम टीम तुम्हारी खिदमत विच हाजिर है जेडे शफील्ड दादरम ते गिरदो नवाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुम की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 03300571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM.

0: samawan.com.
1: लिख रहा

0: हर हर सूर दिल को छो जाए,
1: वही है लिंक एफएम।
0: दिल से आपके साथ
1: लिंक एफएम शेफील्ड।
2: If you would like to promote your business on Link FM, our team can help you. Contact us on 0114 261 8182 or email us on info@linkfm.org.

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ,
1: लिंक एफएम शेफील्ड।
2: My name is Shreya.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Shahid Tashir.

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब

थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रहा थोड़ा सारे गाना चंगा लग्या होना, सो कमेंट करके जरूर दस्यो कि किवें लग्या तुहानू गाना। तो याद ना भुल्यो ना चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लियो, क्योंकि होर बहुत सोहने सोहने गाने इस चैनल पर आने वाले। 96.7 Link FM.

0: listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
2: Mizzier Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114-308-2727 or visit us online, mizziersolicitors.co.uk. Mizzier Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board

लिया तमाशा, मिल गई खुशी, नहीं जाना तेरे साथ। चला गया, और आज के बाद अपनी शक्ल तक मत दिखाना।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
1: लिंक एफएम।

0: creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: सुनिए सुनिए सुनिए, पर्ल बेकर्स ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी। गुलाब जामुन, लड्डू, रसमलाई, फलूदा। सैंडविच, चिकन पनीनी, दही बल्ले।

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ, लिंक एफएम शेफील्ड।

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब

فرق آوے اجاز خنجر دی لوڑ کئی نہیں خدا گواہ ہے

0: escuchen.
1: Listen live online at linkfm.org. Link FM.

0: is Link FM, your community radio station.
1: Assalamualaikum, मैं हूँ फारूक रशीद.
2: मैं और
3: अनुभव. मैं अपन भुट्टा.
2: मैं जी.

0: listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tu sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0330571009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
1: लिंक एफएम।

0: We had a great time shooting in Maldives with the lovely singer Meera. And
1: subscribe.
2: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ,
3: Link FM Sheffield,
4: your number one for news in Sheffield.
5: हम अब्बास से बेहद प्यार करते थे, उसी

0: keep listening to Link FM for the latest local.
1: अलग और मुनफरिद अंदाज रंगारंग प्रोग्रामों के साथ लिंक एफएम हर लम्हा हर जगह.

0: चाय मैं हूँ वही जिसने कभी किसी से कहा था कि एक गरम चाय की प्याली हो और उसको पिलाने वाली हो। वही जिसने कभी कहा था कि तेरे नाम किया है जीवन अपना सारा सा। वही जिसने किसी से कहा था कि कभी किसी की दुल्हनिया बनोगी या मुझसे शादी करोगी।
1: मुझसे शादी करोगी? लाइफ बना दूंगी।
0: लेकिन पर्दे तक तो ठीक है पर असल में
1: माझ्याशी लग्न करशील? मजेत रहशील।

मेरा एक गोल्ड रिकॉर्ड है। एक सवाल है जो जितनी बार मैंने सुना है वो दुनिया में किसी ने नहीं सुना होगा। कब कर रहे हो? पहले ये सवाल सुन के मैं बहुत चिढ़ता था, अब मैं भिड़ता हूँ। कोई पूछता है कि कब कर रहे हो तो मैं पूछता हूँ

चोरी के आम का हर कोई दीवाना, जो पकड़ा गया वो चोर है और जो बच गया वो सियाना। जिसकी लाइफ में वाइफ नाम की नाइफ है उसे बच के सेफ कर।

0: घर में जिस पति की धाक नहीं चलती, बाहर उसकी आंख चलती। समझ लीजिए द वाइफ घड़की घड़की तो अपने आप खुल जाती नजर की खिड़की, खुल जाती नजर की खिड़की, नजर की खिड़की खुल जाती नजर की खिड़की।
1: नंजते मदवे मारकंडू मजा मारू।
0: कहते हैं कि शादी के पहले मर्द अधूरा होता है, करेक्ट। शादी के पहले मर्द अधूरा होता है और शादी के बाद फिनिश। अब क्या हुआ, लग गया झटका जबरदस्त?
1: कब कर रहे हो?

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahul.
4: You are listening to Link FM 96.7.
5: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
6: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
7: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.

0: is Link FM, your community radio station.
1: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी।

0: चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyway, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे, मैं तुम्हारी जिंदगी

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, mazeersolicitors.co.uk. Mazeer Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have

0: interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: खुश इखलाक अमला लाजवाब सर्विस AAMOT. अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी की एमओटी नहीं करवाई या आपकी गाड़ी की एमओटी एक्सपायर हो चुकी है तो कहीं और जाने या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हर किस्म की गाड़ियों की एमओटी का काबिल एतमाद सेंटर, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री। गुलाम कादर साहब से अभी राब्ता करें। कॉन्टैक्ट नंबर 0786786-2585.
2: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 Medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor. Perform to direct Sheffield for just £40. 368. That's 07456 848 368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
3: $55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम
1: Sheffield's very own community radio station,
2: लिंक एफएम।

0: मैं हूं अली अब्बास और आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7 एफएम.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mutashir.
4: This is Rafael.
5: Cook Studio, Season 15.

0: interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: सुनिए सुनिए सुनिए, पर्ल बेकर्स ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी। गुलाब जामुन, लड्डू, रसमलाई, फलूदा।

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब

0: listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, Azir solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Azir solicitors is trading style of affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions.

0: कि आजा तेरी याद आई। समय इस खूबसूरत नगमे के साथ हमने आज के प्रोग्राम सुहाना सफ़र का आगाज किया। सुहाना सफ़र आप लिंक एफएम शेफील्ड से सुन रहे हैं। आप सबकी खिदमत में अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सबका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा और यही दुआ है सामीन के आने वाले दिन भी आप सबके लिए ढेरों खुशियां लेकर आएँ और आप सब जहां रहें अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। साथ आप हमारा निभाते रहिएगा। इफ़त हमीद और मोहम्मद यासीन के साथ आप सुहाना सफ़र प्रोग्राम सुन रहे हैं। समीन ये प्रोग्राम आप फेसबुक पर भी आप सुन भी रहे हैं और आप हमें देख भी रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैं आपको नंबर भी बताऊंगी कि आप हम तक कैसे पहुंच सकते हैं। प्रोग्राम आप हमारा सुनते रहिए।
1: सुहाना सफर विद इफ़त हमीद एंड मोहम्मद यासीन।
2: यू आर लिसनिंग। जी हाँ सामीन, आप सुहाना सफर प्रोग्राम सुन रहे हैं। जैसा कि इफ़त जी ने बता चुके हैं आपको कि ये प्रोग्राम जो है ना ये 79 एवरी संडे की शाम को पेश किया जाता है। यादों से हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। यादें में कुछ ऐसी होती हैं, याद उसकी अभी भी आती है, याद उसकी अभी भी आती है, बुरी आदत है कहाँ जाती है।
0: जी हाँ बिल्कुल, यादें जो हैं अच्छी हों तो बहुत ही खूब है, लेकिन याद तो फिर याद है। कुछ यादें ऐसी हैं जिनको सोच कर ही आपका दिल जो है वो बहुत खुश हो जाता है, और कुछ यादें ऐसी हैं बहुत तल्ख यादें होती हैं जो आपको थोड़ा सा उदास भी कर देती हैं। लेकिन हमारा मकसद आज आपको उदास करने का बिल्कुल भी नहीं है सामी। आप हमारा साथ निभाते रहिएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में महसूस कर सकें। आप अगर हम तक पहुंचना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 07939849339 07939849339। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप स्टूडियोज में आप हमसे कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो स्टूडियोज का नंबर है 01426181 पर आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। सामिन, इससे पहले कि हम प्रोग्राम के आगे चलें, सबसे पहले जो हैं वो एक तो अच्छे जो बरतानवी शहरी हैं वो मौसम से ही अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं।
2: जी,
0: मौसम तो बहुत सुहाना है, इसमें कोई शक नहीं। और अब वैसे भी अब स्कूल हॉलीडेज़ जो हैं उनका आगाज़ हो चुका है। हमारी दुआ है कि अब हमें अच्छा मौसम चाहिए, तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हमें अच्छा मौसम हॉलीडेज़ में भी देखने को मिले, ताकि हम अपनी छुट्टियाँ पूरी तरह से इंजॉय कर सकें। और दूसरा सामान जो है खेल है, खेल की भी बात जो है ये साथ साथ होनी चाहिए। आजकल आपको पता है कि फीफा जो है ये वर्ल्ड कप का
2: आज अभी फाइनल
0: है, और आज जो है ये वर्ल्ड कप का फाइनल है, और ये है स्पेन और अर्जेंटीना के दरमियान में है। तो हमारी जो है ना वो बेस्ट विशेस दोनों टीम्स के लिए हैं, ठीक है। जो दोनों टीमें यकीनन बहुत अच्छी हैं जो फाइनल तक पहुंच गई हैं, और हम जो हैं मुबारकबाद देंगे इंग्लैंड की टीम को भी। कल का जो इन्होंने मैच खेला जबरदस्त मैच था, जो छह इन्होंने गोल किए। जी हाँ, और फ्रांस के अगेंस्ट ये मैच इन्होंने खेला, बहुत ही अच्छा मैच था। वेल डन इंग्लैंड। और वो मैं तो ये कहूंगी कि ये मेरे दिल की बात है, इंग्लैंड यू हैव वॉन अवर हार्ट्स। बिल्कुल, इन्होंने हमारे वाकई दिल जीत लिए हैं। जीत और जीत, खेल में जीत हार तो होती रहती है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी ब्रॉन्ज जो है वो इन्होंने मेडल ले लिए, हासिल कर लिए, और बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से हमारी इंग्लैंड की टीम को।
2: यस, आमीन। इंग्लैंड की टीम को जैसा कि हम कहते हैं कि मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके साथ साथ प्रोग्राम सुनते रहिए, और हमारे पास कुछ फरमाइशें भी हैं। एक मोहसिन साहब की फरमाइश है, वो भी हमने प्रोग्राम में शामिल किया है, और जनाब फजल मुगल साहब आपकी फरमाइश भी प्रोग्राम में शामिल है। ये दिल वालों की महफिल है सामने, इधर दिल है उधर दिल है, यहाँ दिल है वहाँ दिल है।

0: बहुत दूर तलक जाना पड़ता है, बहुत दूर तलक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है।
1: जी, मुझे ये तो मालूम नहीं कि जिंदगी कितनी बड़ी है, लेकिन मुझे ये तो मालूम नहीं कि जिंदगी कितनी बड़ी है, लेकिन जितनी इसमें आपकी अहमियत सबसे बड़ी है। समय आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो ये प्रोग्राम है।
0: जाहिर है समय हमारे जो है ना लिंक एफएम के लिसनर बहुत दूर तक हैं। एक बार मैं हांगकांग में था तो चंद बरस कबल, तो 7-8 घंटे का फर्क है वहाँ पर जो हेड है। तो शमरेज साहब का प्रोग्राम आन था, तो मैंने वैसे चेक किया, मैंने कहा क्या टाइम है देखते हैं वहाँ पर। तो फेसबुक पर मैंने चेक किया तो शमरेज साहब बिल्कुल पैसे चलता था कि नेक्स्ट कमरे से बोले। तो शमरेज साहब को मैंने फ़ोन भी किया और कहा कि मैं प्रोग्राम आपका सुन रहा हूँ इस वक्त, रात को सुबह का वक्त था।
1: बिल्कुल जी हाँ, हमारे लिसनर्स जो हैं ये पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और प्रोग्राम सुन भी रहे हैं और हमें दाद भी देते हैं और हमें पता भी चलता है कि आप हमारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। आपके प्रोग्राम को सुनने का, पसंद करने का सामिन बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि फेसबुक पर आप हमें देख भी रहे हैं। अगर आप हम तक कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप ज़रूर भेजिए 07939849339 पर आप हमें अपने मैसेज भेज सकते हैं। अभी याकूब साहब का जो है ये टेलीफोन कॉल आई, उन्होंने मैसेज दिया। तो याकूब साहब आपके सबसे पहले तो फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रोग्राम को रेगुलर प्रोग्राम हमारा सुनते हैं आप, प्रोग्राम को सुनने और पसंद करने का याकूब साहब बहुत बहुत शुक्रिया।
0: फरमाइश उनकी नोट कर ली है और कोई अच्छा सा नगमा आपके लिए आज प्ले कर लेंगे।
1: जी यकीनन। एक आदमी ने नॉवल खरीदने गए जी, तो उन्होंने नॉवल के धोखे में एक डिक्शनरी खरीद ली।
0: अच्छा
1: ठीक है। तो उनके एक साथी दोस्त ने कहा हाँ भाई सुनाओ कैसा नॉवल तुमने खरीदा, वो कैसा रहा, कैसा तुमने पढ़ा, तुम्हें पसंद आया। तो दोस्त ने कहा कि बड़ी, उसने बताया कि कहानी तो मेरी समझ में नहीं आई।
0: अच्छा
1: ठीक है। अलबत्ता ये बहुत खुशी हुई कि कहानी के एक एक लफ्ज़ की वज़ाहत बहुत बिल्कुल जी
0: जाहिर है कि उसमें एक अल्फाज हो तो 8-10 जो है ना उसकी मीनिंग्स जो है ना समझ आ जाते हैं।
1: बिल्कुल। कहते हैं कि डॉलर्स, रुपए, पैसे, पाउंड्स, यस सारी ये मनी है, रकम है। तो ये बात कर रही हूं, कहते हैं डॉलरों का मतलब है कि दीवाना है। डॉलरों का असीर है हर शख्स, क्या अजल से फकीर है हर शख्स। यू मार खाता है जो मार मरने जी। क्या

0: किस कदर बेज़मीर है हर शख्स।
1: वाह वाह वाह, क्या कहना, आपने बहुत तफसील कर दी है शख्स के बारे में जी, कौन है, क्या किसके पास है और क्या किसको देना चाहता है। यानी कि इतना पैसा आ जाए तो चैरिटीज वगैरह में भी इंसान को देना चाहिए, लेकिन ये चीज मैं सुनने में आया था कि भाई जिसके पास ज्यादा पैसा आ जाए
0: दिल भी छोटा हो जाता है, दिल भी आपका छोटा हो जाता है ना। हाँ, ये तो बात है, ये तो बिल्कुल हकीकत है इसमें। तो
1: अभी समय 30 सेकंड बाकी हैं एड्स में, इस देर में थोड़ी सी हम हल्की सी बातचीत कर लेते हैं।
0: कब्जा फीस उनकी पूछते हो तुम क्या? अब मेरा जो बचा बचाया सामान था वो भी बिक गया।
1: अच्छा, तो अब समय आते हैं एड्स की तरफ।
2: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do Ace of the Guard today and drop your Monte clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road.

0: or 0741929729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri peri chicken burger.
2: Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khane ke liye sab hi beta.
3: Or visit nayabsonline.co.uk.
4: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्राइन गड्डी ना एक्सीडेंट होई गया है द क्लेम टीम तुसने खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम ते गिरदोनवाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 0330571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रोदरम
5: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM. Link FM.
6: And the winner is...
7: And the winner is...
8: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
9: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp
10: 07939-849-339. तू सुन मेरी दुआ ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा
11: This is Ahmed Hussain and you're listening to Link FM
12: My name is Shireen
13: My name is Abed Rahman
14: My name is Shai Mudashir
15: This is Rahul
1: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: You are listening to Suhana Safar
18: with Iffat Hamid and Mohammed Yasin.
19: जी सामिन सुन रहे हैं सुहाना सफर आप मोहम्मद यासीन और इफ़त हमीद के साथ लिंक एफएम पर हमारा और आपका खूबसूरत साथ रहेगा रात 9 बजे तक अगर आप भी हमारा साथ निभाना चाहते हैं तो आप हमें टेक्स्ट मैसेजेस भेजिए 07939849339 पर आप हमें टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं इसके अलावा अगर आप कॉल करना चाहते हैं स्टूडियोज में तो हमारा नंबर है 01142618181 अब कुछ हमसे और मजाक की भी बात होती जाए साथ साथ एक शख्स के तीन बेटे थे
20: जी
19: एक इंजीनियर
20: तीन ठीक है
19: एक इंजीनियर दूसरा डॉक्टर और तीसरा बैंकर उस शख्स ने मरते वक्त अपने बेटों को नसीहत की कि उसका हर बेटा उसकी कब्र में 1,00,000 रुपए रखेगा
20: अच्छा
19: जब वो शख्स फौत हो गया तो उसकी नसीहत के मुताबिक उसकी तदफीन के वक्त उसके इंजीनियर वाला पूरा पैकेट वालिद की कब्र पर रख दिया
20: अच्छा
19: उसके बाद डॉक्टर बेटे ने 5,000 रुपए वाले नोट के तकरीबन 20 नोट 5,000 के 20 नोट बाप की कब्र पर रख दिए अब तीसरा जो बैंकर बेटा था बैंकर बेटे ने
20: 13 साल
19: है कितना प्यारा
20: किशोर कुमार
19: हां जी
20: ये
0: गालबन अनिल कपूर की फिल्म थी
3: मुझे,
0: फिरोज खान के साथ
3: मुझे इतना इसके बारे में
0: जी।

0: क्या ये साथ देने के लिए दुनिया में दोबारा आएंगे? ये कुछ कह रहे हैं जी हाँ,
1: बस वो आपको पता प्यार तो फिर प्यार, इश्क मोहब्बत तो फिर ऐसा ही है ना कि इंसान कभी सोचता नहीं कि इस दुनिया में या इस दुनिया के बाद, अपना अपना ये तो बिलीव है यासिन, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता जी।
0: अब देखिए ना कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कौन सा देश तुम चले गए हो
1: जी,
0: जो भी गया है ना ही चिट्ठी ना संदेश, कुछ भी तो नहीं भेजा उन्होंने दिया
1: जी। सही है। बात करते हैं काबिलियत के हवाले से, और वैसे भी मैंने आपसे कहा है कि अब हॉलीडेज हो चुकी हैं, बच्चों के एग्जाम्स जो हैं ये ओवर हैं, अब जो हैं अगस्त में रिजल्ट्स का इंतज़ार है सब बच्चों को, बल्कि टीचर्स को भी, कि उनके बच्चे कैसा उसमें परफॉर्म करेंगे। और ढेरों सारी दुआएं बच्चों आपके लिए हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। लेकिन इसमें एक मैं बता रही हूँ कि ऐसे भी हो सकता बाद में सिचुएशंस आए कि एक बात को उसके बच्चे के बारे में स्कूल टीचर का खत मिला, ये वो वाले बच्चे हैं जिन जो उन्होंने वैसे एग्जाम नहीं दिए, लेकिन एवरी ईयर की जो परफॉर्मेंसेस होती हैं वो पेरेंट्स जो हैं वो टीचर्स जो हैं वो पेरेंट्स को लिखते हैं आपके हर साल की जो है उसके बच्चों ने कैसा उसके परफॉर्म किया। तो टीचर का खत मिला तो बाप ने गुस्से में बेटे को बुलाया और गरजते हुए कहा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे टीचर ने इस खत में क्या लिखा है? बेटे ने सर नफी में हिलाते हुए कहा, ना मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं मालूम कि टीचर ने क्या लिखा है। तो बाप ने कहा, तुम्हारे टीचर ने लिखा है कि वो शायद जिंदगी भर तुम्हें कुछ भी ना सिखा सके।
0: यानी कि बच्चा सिखा हुआ है सब कुछ जी।
1: बहरहाल तो बेटे ने जी बच्चों से मैंने पहले ही कहा कि इनको इतना इजी नहीं लेना चाहिए।
0: नहीं, नहीं,
1: बच्चे जो है माशाल्लाह बच्चे बच्चे ही हैं, लेकिन इनके पास ऐसे ऐसे जवाबात हैं आपके सवालों के कि वो आपको स्पीचलेस कर देते हैं। बहरहाल जी,
0: जो जी बच्चे जहीन होते हैं ना
1: जी,
0: यानी कि आजकल के बच्चे जो है ना खासी टैबलेट्स और टेलीफोन पर लगे रहते हैं, मेरे ख्याल में उनके पास इस किस्म का जवाब तो नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे खासकर अपने मुल्क में होते हैं ना, काफी ज़हीन होते हैं बच्चे, जब स्कूल जाते हैं वापस आते हैं तो
1: जी ऐसा। इसी तरह अब देखिए, अब आपने यहाँ पर एसी है, मजे से हम बैठे हैं, गर्मी है तो ठंडा हो जाएगा, अगर सर्दी है तो
0: गर्म,
1: एसी को जो है ना वो अकॉर्डिंगली हम सेट कर सकते हैं। इसी तरह एक मोहतरमा एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और उन्होंने वहाँ पर वेटर को बुलाया और कहा कि एसी बंद कर दो। ठीक है,
0: ठीक है।
1: तो कुछ देर ये औरत तुम्हें पागल बना रही है।
0: ओके
1: जी। तो वेटर
0: बिल्कुल यानी वेटर जो है तो वैसे तो नहीं वेटरिंग करते, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में जरूर होता है कि किस किस्म गॉक्स गॉक जो है था कस्टमर के साथ डील करेंगे। अब मोहसिन साहब आपकी फरमाइश हमारे पास आ चुकी है
1: जी, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म जी।
0: जुबैदा खानम की आवाज थी, गालिबन 60s का ये नगमा है इंडिया
1: जी।
0: मुझे तो अच्छी तरह याद नहीं है कि कब ये नगमा मैंने पहले सुना था जी उस जमाने में लेकिन
1: बच्चे हैं वो भी पुराने नगमे अगर सुने तो कोई भी नगमा पसंद आ सकता है
0: जी, जी,
1: तो इसलिए ये नहीं आप कह सकते कि ये नगमा अगर हमने सुना है या फरमाइश की है तो ये कब का नगमा है।
0: पहले सुना था इस वजह से मैंने ये नगमे को ढूंढ निकाला है।
1: माशू जी बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ ना कि आपने सुना और उसको ढूंढ लिया। बहरहाल मोहसिन साहब पसंद आपकी पेशकश हमारी।
0: जुबैदा खानम रातें बना के रब्बा नेरियां, यानी कि जो काली होती है ना अंधेरी वाली, वो रात

0: मखन रफ़ी और आशा भोसले थी ये समय तेरे इश्क का मुझ पर हुआ है ऐसा
1: ऐसा सर न जाने किस तरह इश्क कर रहे हैं हम न जाने किस तरह इश्क कर रहे हैं हम जो हमारा हो ही नहीं सकता उसी पे मर रहे हैं हम।
0: वाह वाह क्या कहना क्या कहना
1: अब कुछ और
0: पहले जी जो टेलीफोन कॉल आई थी उसके बारे में
1: जी प्लीज बताइए
0: हमारे लिसनर हैं जो हैं
1: जी
0: इनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं यानी कि क्योंकि आगे रखते हैं इंडिया
1: जी बिल्कुल हमारे जो भी हमारे लिसनर्स हमें फोन करते हैं मैसेजेस भेजते हैं बहुत ज्यादा उनकी जो है वो ज़ाहिर है सबसे ज्यादा अहमियत उन्हीं की है
0: जी,
1: आप हैं तो हमारा प्रोग्राम है
0: बिल्कुल।
1: आपके ये मशवरे हैं तो हम हैं तो जी हाँ अभी जो मैसेज हमें मौसूल हुआ टेलीफोन कॉल पे
0: भाई आशिक हुसैन साहब
1: जी
0: इनके मुंह से कहते हैं कि भाई अल्फाज जब निकलते हैं पता चलता है कि मोती निकल रहे हैं
1: माशाल्लाह
0: इस तरह की तारीफ और यू नो लॉट ऑफ थिंग्स यू नो
1: जी
0: ये कह लीजिए
1: बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आशिक हुसैन साहब आपने फोन किया हमारे हमारे बारे में हमारे प्रोग्राम के बारे में आपने जो राय दी है हम उसका बहुत एहतराम करते हैं आपकी जरा नवाजी है कि आपने हमारे प्रोग्राम को इतनी अहमियत दी इतनी कदर करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया तो इसी तरह सामिन आप हमारा साथ निभाते रहेंगे तो यकीनन हमारा भी यही दिल चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो हम प्रोग्राम को बेहतर तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर सकें बहुत बहुत शुक्रिया जी हाँ मैं क्या कर रही थी कि बात कुछ दिल की हो रही है तो करार दिल को सदा जिसके नाम से आया करार दिल को सदा जिसके नाम से आया वो आया भी तो किसी और काम से आया।
0: अच्छा ऐसा करते हैं कि नगमा प्ले कर दें उसके बाद
1: जी बिल्कुल शायदा आपने फरमाइश की थी लता मंगेशकर की आवाज में नगमा सुनने के लिए तो लीजिए फिल्म रजिया सुल्तान से ये नगमा आप ही के लिए ए दिले नादान

0: creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: सुनिए सुनिए सुनिए, पर्ल बेकर्स ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी। गुलाब जामुन, लड्डू, रसमलाई, फलूदा। सैंडविच, चिकन पनीनी, दही बल्ले और Pearl Bakers.
2: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond Wedding Services. Your dream, beautifully designed.
3: Listening to Link FM.
4: Sheffield's very own community radio station.
5: Link FM.
6: You are listening to Suhana Safar
7: with Iffat Ali and Mohammed Yasin.
8: Tujhe hasil.
9: इससे पहले कि हम अगले नगमे की तरफ जाएं और मैसेजेस जो हैं ये मोहसिन आपके मैसेज जो है ना ये आपने पहले भी भेजा था और आप लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम लिखते हैं कि नाइस प्रोग्राम एंड सॉन्ग्स बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने प्रोग्राम को पसंद किया नगमे भी पसंद किए आपने और आपने लिखा है कि आपने हमें फ़ोन भी किया था और ये स्पेन को मेरे ख्याल में ये जो है ना उसकी फेवर हैं स्पेन हाँ। की फेवर में हैं ये और जी हाँ बहुत बहुत शुक्रिया अपने राय हम तक पहुंचाने का मोहसिन और इंशाल्लाह देखते हैं कि अब मैच के बाद कौन सी टीम जो है ये विन होती है और थैंक्स फॉर द सॉन्ग जो हमने आपका नगमा सुनाया उसके लिए भी आपने बहुत बहुत आपने हमारा शुक्रिया अदा किया है तो असल में ये प्रोग्राम है ही आपका मोहसिन और आप लोगों की पसंद है और हम उसको पेश कर सके तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है तो बहुत बहुत शुक्रिया सामिन हम तक अपने जो है ना मैसेजेस जो है ना ये पहुंचाइए अगर आप भी मैच देख रहे हैं आपके ख्याल में कौन सी टीम को आप फेवर कर रहे हैं वो भी आप अगर आप बताना चाहें तो ज़रूर आप हमें बता सकते हैं 07939849339 ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है थोड़ी देर पहले शायद आपके लिए हमने जो है ये नगमा पेश किया था और फिल्म थी रज़िया सुल्तान बड़ा ही खूबसूरत नगमा था ऐ दिले नादान रज़िया सुल्तान जो कि ये एक क्वीन होती है इसमें मलका होती है और उसको एक हबशी उसका एक गुलाम होता है उससे उसको मोहब्बत हो जाती है जो कि उसके घोड़ों की जी हाँ जो उसके मोहब्बत का इजहार तो नहीं कर सकती लेकिन ये नगमा जो है ना वो उसकी मोहब्बत का इजहार करता है ऐ दिले नादान तो खूबसूरत नगमा था और इसको बड़ी अच्छे तरीके से पिक्चराइज भी किया गया और उम्मीद है कि शायद आपने इस नगमे को पसंद किया होगा सामिन साथ आप हमारा निभाते रहिएगा बात हो रही थी कुछ तंजो मिजाज की तो एक बच्चा जो है एक डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द की दवा दे दें तो डॉक्टर कहता है बेटा आपको कहाँ पर दर्द है बताएं मुझे तो कहता है अभी तो कहीं पे भी नहीं है लेकिन थोड़ी देर में हो सकती है डॉक्टर कहता है क्या मतलब इसलिए कि मेरे अब्बा मेरा रिजल्ट लेने गए हैं जी है जी जी
10: आपने मोहब्बत की बात की है हाँ कुछ तो लोगों का ये भी ख्याल है कि जाने क्यों लोग मोहब्बत करते
9: हैं
10: दर्द के बदले दर्द दिल लेते हैं क्या बात है जी?

0: खूबसूरत नगमा फिल्म महबूब की मेहंदी से ये नगमा था,
1: राजेश खन्ना और लीना चंदावाकर
0: की बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। उम्मीद है कि इस नगमे को आप सबने पसंद किया होगा। सामी, क्यों करते हो इतनी खामोश मोहब्बत हमसे, क्यों करते हो इतनी खामोश मोहब्बत हमसे, लोग इस बेचारे का कोई नहीं
1: है। वाह वाह, क्या कहना। खामोशियां जब इंसान के जहन में आती हैं तो काफ़ी चीज़ें और भी जहन में आती हैं जब इंसान खामोश रहता है। तो खामोश मोहब्बत जो है ना, ये एक किस्म का, किसी किस्म का जो है ना वो लिंक भी है दूसरे लिंक के, दूसरे के साथ। तो इस तरह से खामोश मोहब्बत वाले कभी कभार कामयाब रहते हैं।
0: जी, रफ्ता रफ्ता बुझ गया आखिर चिराग़े आरज़ू, रफ्ता रफ्ता आखिर बुझ गया चिराग़े आरज़ू, पहले दिल खामोश था अब जिंदगी खामोश है। दिल शिकस्ता है अगर गम से तो हैरत कैसी, दिल शिकस्ता है अगर गम से तो हैरत कैसी, खोखले पेड़ को झोंके भी गिरा देते हैं। किस दर्जा दिल शिकन थे मोहब्बत के हादसे, हम जिंदगी में फिर कोई अरमां न कर सके, अपने तेवर तो संभालो कि कोई ये न कहे, अपने तेवर तो संभालो कि कोई ये न कहे कि दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं।
1: क्या कहना। अब गालिब शायर से जी, कुछ लोग जो है ना वो अनपढ़ होते हैं, लेकिन अगर किसी के साथ यानी कि कोई जानने वाला है, कुछ चाहने वाला है, तो उसके साथ मोहब्बत का इजहार वो चाहते हैं कि शायरी में करें।
0: बिल्कुल।
1: तो इन साहब की यही बात है कि ये भी कहते हैं कि मैं गालिब से पूछूंगा, हैं जी, गालिब से मैं रजू करूंगा कि कौन सा शेर मैं तुम्हारे लिए पढ़ूँ, हैं जी, गालिब से मेरी मोहब्बत का, अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं।
2: मेरे शहर दी सब तो चंगी खुशबू तेरे कोलों संग गई, नी तू मुर्दे जिंदा कर देंगी जे कबरां कोलों लंग

0: जी हाँ, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते वो गालिब के साथ जो है ना रुजू करें, वही उनकी मुश्किलात का हल निकाल सकते हैं।
1: जी सामिन, प्रोग्राम में साथ निभाते रहिएगा। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं लिंक एफएम से, सुहाना सफर प्रोग्राम, मोहम्मद यासीन और इफ़त हमीद के साथ आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। कहते हैं कि जिन्होंने महबूब पे महबूब देखे उनसे दर्द नहीं पूछा करते।
0: बिल्कुल सही फरमाया
1: जी। सामिन, आपके मैसेजेस हम तक जो आ रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी भेजना चाहते हैं तो 07939849339 पर अपने मैसेजेस आप हमें भेज सकते हैं। अब जुनेद जी, आपका जुनेद यूसुफ, आपके मैसेज भेजने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लिखते हैं कि ग्रेट प्रोग्राम, आप प्रोग्राम ऑलवेज पसंद करते हैं हमारा और बाकायदगी से हमें मैसेजेस भेजते हैं। तो जुनेद बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम को सुनने और पसंद करने का और मैसेजेस भेजने का।
0: हमारे ऐसे भी लिसनर हैं जो वेट करते हैं कि कब ये प्रोग्राम शुरू हो
1: जी, बिल्कुल,
0: और उसको सुने और फिर पार्टिसिपेट भी करें, यानी कि फोन करें या मैसेज दें यानी किसी भी
1: जी। और दूसरा शाहिदा की तरफ से भी मैसेज आए, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, लिखती हैं थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग नाइस लता सॉन्ग, नाइस प्रोग्राम

0: बहुत बहुत शुक्रिया शायदा जी आपके लवली मैसेज का, बहुत बहुत शुक्रिया
1: टीम की इन बात की है। यहाँ लिंक एफएम की टीम है, यानी एक टीम नहीं है, काफी टीम है। हमारे सुहाना सफर की एक टीम है, दूसरे जो मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी प्रोग्राम है एक एक टीम है, उनके भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम पेश किए।
0: बिल्कुल, देखिए विदाउट टीम के तो कोई भी काम नहीं होता, ये तो सारा होता है टीम वर्क होता है, ये सारा जो हम करते हैं आपके लिए पेश करते हैं, तो साथ हमारा निभाते रहिएगा। अब मैं जो है ना ये पेश करूं कि जी बाज़ुकात होता है कि हम बहुत कुछ जो है वो करते हैं और नहीं आते।
1: अच्छा,
0: जब भी

0: चेयरमैन फजल मुगल साहब की पसंद पर
1: जी
0: एक नवा प्ले कर रहे हैं। ये है सुधीर की थी फिल्म और मसूद राणा की थी आवाज, टांगे वाला खैर मंगता टांगा लाहौर दा होवे या के डुडियाल दा।

मुसौदरा की थी ये आवाज, ये काफी सुधीर की थी फिल्म सुधीर उस वक्त जमाने के अपने

0: तीस के बहुत बड़े अदकार थे, ये लाला सुदीन को कहा जाता था।
1: और ये नगमा हमने यासिन पेश किया था
0: जनाब मुगल साहब के लिए। ये मुगल हैं, क्या नाम है इनका, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है जब इंसान सामने होता है तो नाम उसका भूल जाता है। जब
1: चलें मुगल साहब लेकिन वो समझ गए होंगे
0: मुगल साहब
1: जी, तो मुगल साहब यही नगमा हमने आपके लिए आपकी पसंद पर पेश किया।
0: अब्द मुगल साहब भी जो प्रोग्राम पेश करते हैं यहाँ पर, वो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं गालबा, तो सभी मुगलान साहब के लिए हमने ये नगमा पेश किया है।
1: कहते हैं कि सबके चेहरे में वो बात नहीं होती।

0: B.
1: जी जी जो प्यारे लोग हैं उनसे यानी कि कम मुलाकातें होती हैं, वैसे तो
0: जी
1: नहीं, ये नहीं हम नहीं कह सकते नहीं होती है, लेकिन बहुत कम होती है।
0: समय ना बात कुछ करते हैं कि इंसान

0: जल्दी कर देता हूँ
1: जी,
0: ठीक है। इंसाफ जो है ना वो जल्दी मिल जाता है,
1: यही है बिल्कुल।
0: कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कह के नजायज काम नहीं करते, कहते हैं कि नहीं जी रिश्वतखोरी बिल्कुल नहीं देनी हमने, और उनको लटकाया जाता है। अब क्या सुनाऊं, हाँ आपने फिल्म देखी होगी इफ़त जी, क्या नाम था उसका, जीने की राह, हैं जी, बड़ी बढ़िया फिल्म थी तनोजा के साथ।
1: अच्छा,
0: जतंदर और तनोजा कभी कभार नगमा तो आपने सुना होगा, आने से उसके आए बाहर
1: नगमा सुना, यकीनन मैंने सुना है जी,
0: कभी समय आपको, लेकिन इससे पहले ये सुनिए।

0: Osman. My name is Saim Mubashir.
1: This is Rahul.
2: You are listening to Link FM 96.7.
3: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
4: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
5: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.

0: एक और रीना रॉय और जतेंद्र की ये फिल्म थी जिससे हमने ये नगमा सुनाया। सामिन आपको, आप सुन रहे हैं सुहाना सफर प्रोग्राम लिंक एफएम से।
1: और अभी हमें जो है मैसेज मिला है शबान साहब की तरफ से। शबान साहब, आपके मैसेज भेजने का और फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम को आपने पसंद किया है और आपने गाने की एक फरमाइश भी की है, तो कोशिश करते हैं कि आपका वो नगमा जो है प्रोग्राम में शामिल कर सके। सामिन साथ आप हमारा निभाते रहिएगा। प्रोग्राम जो है ये जारी है रात 9 बजे तक हमारा, और आपका ये साथ रहेगा। अगर इस दौरान आप हमें कोई भी मैसेज भेजना चाहते हैं तो 07939 8493939 पर आप हमें कॉल कर मैसेजेस भेज सकते हैं। अगर आप स्टूडियोस में आप बात करना चाहते हैं तो 0114-261-8181 पर आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं। कहते हैं सामिन, दुख ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला जिसको अपना आप याद दिलाना चाहता है, ठीक है, उसे दुख का इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपनी जानिब मतवज्जो कर लेता है। बड़ी वैसे हकीकत की बात है।
0: ये दिखने में आया है कि जब इंसान परेशान होता है, दुख होता है उसको, तो फिर वो
1: खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ जो है ना मतवज्जो हो जाता है। दुख की भट्टी से निकल सरजद होने लगते हैं। दुख तो रूहानी, इस पर साबिर और शाकिर ही चढ़ सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, वैसे मुश्किल हो जाता है लोगों को उस पर चढ़ना, लेकिन वही कहते हैं जो सब्र करेगा वही जो है ना वो इंसान कामयाब रहता है। तो शबान साहब आपकी नजर नगमा प्ले कर रहे हैं, ये आपने अधिका कयानी की आवाज़ में सुनना चाहा था, बुए बारियां ते बुए टप शप के, कुछ ऐसा ही है उसका नगमा दिया
1: कुछ ऐसे ही है जी।
0: तो मैं अधिका कियानी का जो मेरे पास है वो एक और नगमा है, ये बहुत क्लासिकल नगमा है, ये सुनाते हैं आपको। आप जरा खांसी पर कंट्रोल कीजिए, नगमा सुना देता हूँ मैं जी। दिल चीज है क्या आप मेरी जान लीजिए।

0: असल में इफ़त जी मिक्सअप हो गए हैं, ये शबन मजीद की थी आवाज़, क्या ख्याल है आपका?
1: जी बिल्कुल 100% शबनम मजीद की आवाज़ थी। तो शबान साहब, इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते हदीका क्यानी की आवाज़ में जो है आपने जो बूहे बारियां आपने मांगा है आपकी खिदमत में, हम इंशाल्लाह ताला ये नगमा आइंदा
0: कोशिश करेंगे
1: पेश करेंगे।
0: जी
1: समिन, ससुराली रिश्तेदारों से ताल्लुकात अच्छे ना होने के लिए वजूहात का होना हरगिज जो है ये जरूरी नहीं है, ठीक है, यही काफी है कि वो ससुराली रिश्तेदार है। बच्चों पर इन बातों का हरगिज असर नहीं होता, बल्कि वो इस जो ये चपकलिश चलती है ना ये जो घर में, ठीक है, इससे वो बड़े लुत्फ अंदोज होते हैं। वो जानते हैं कि अगर अम्मी सवेरे सवेरे सुबह सुबह हलवा और रोस्ट तैयार कर रही हैं तो आज नानी जान आएंगी, ठीक है, और अगर अम्मी सुबह से अपना सर दुपट्टे से बांधे पाए तो फिर दोपहर के खाने में पिछले 3-4 रोज के बचे कुछ खाने जो है वो खाने को मिलेंगे, समझ ले के दादी जान आ रही है, ये फूफो जान आ रही है, ठीक है जी। और

0: ने ये नोट दिया और
1: दोनों रिश्ते बराबर किस्म के होते हैं, यानी कि लेकिन बच्चे जो है ना ये माँ के साथ जितने भी रिश्ते होते हैं, फूफो खाला उनकी बेटियां बेटे मामू शामू क्यों ज्यादा पसंद करते हैं?
0: देखिए ये मैं ये समझती हूँ कि ये आपके पेरेंट्स का जो है ना ये उनका होता है कि बच्चों को वो क्या बताते हैं उनको, मेरा ख्याल में दोनों को ही बताना चाहिए कि देखें अगर आपके
1: मोहब्बत
0: बराबर की होनी चाहिए, चाहे वो माँ की साइड के हों या वो बाप की साइड के हों, तो बच्चों के दिलों में दोनों का जो है ना वो एक जैसा एहतराम होना चाहिए और ये हमारा फर्ज बनता है माँ और बाप दोनों का।
1: अब मुकेश साहब लाइन पर मौजूद है कुछ कहने के लिए, ये भी कह रहे हैं मेहदी हसन की तरह उदास नगमे इनके बहुत ज्यादा है, आया ना हमको प्यार जुताना। हैं जी, प्यार तो हम तुम्हीं से करते हैं मुकेश साहब।

0: प्यार हमेशा अमर और अमर ही रहता है। इंसान लोग तो इस दुनिया से चले जाते हैं लेकिन प्यार मोहब्बत पीछे रह जाती है। और कभी कभार अभी फजी आपने ये भी देखा है कि जो इंसान गुजर जाता है पीछे लोग इतनी मोहब्बत से याद करते हैं कि वो चला गया है हमसे।
1: काश यही मोहब्बत अगर किसी की जिंदगी में दिखा दी हो तो बहुत कुछ बदल सकता है।
0: बिल्कुल
1: बात में जिसे अगर समा जाती है सांसों महक है जो कर देती है और दिमाग ने कहा चाहत में मैं काम करना बिल्कुल छोड़ देता हूँ। जी हाँ आधी रात और का हाँ

0: अगर वो
1: चलो ऐसा करते हैं कि शशि कपूर की फिल्म जब जब फूल खिले से एक नवा है, ना ना करते प्यार
0: तुम्ही से कर बैठे,
1: करना था इकरार मगर इनकार, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे।

0: ना ना करते प्यार तुम्हें सिकार बैठी। निंदा और शशि कपूर की ये थी फिल्म जब जब फूल के लिए, बहुत प्यारी, कश्मीर में जो डल झील है उसमें ये फिल्म आई गई थी। ये फिल्म आखिरी निर्माण प्रोग्राम का एक प्ले करना है समय ना हमने, लेकिन इससे पहले कुछ और बात
1: जी समय कहती है कुर्सी का है ना, ये तो सबको पता है कि कैसा होता है, और खास तौर पर इक्तदार का अपना ही नशा होता है, जो एक मर्तबा कुर्सी पर बैठा वो शायद ही खुद इससे दस्तबरदार हो, और बड़े बड़े अच्छा होता नहीं देखा गया इस कुर्सी की खातिर।
0: बिल्कुल
1: ऐसा ही है जी हाँ। तो इसी तरह जो है एक आला दर्जे के अफसर के पास एक साहब मिलने गए तो उन पूछा तो पूछा वो कैसे? तो चपरासी ने बड़े फखर से बताया, मुझे यहाँ इस कुर्सी पर बैठे हुए 30 साल का अरसा हो गया है, इस दौरान मगर मेरी कुर्सी वैसी ही वैसी मजबूत है। बात तो सही है।
0: इजाजत चाहेंगे समय बहुत ही, यानी के 2 घंटे
1: हमें जी हाँ इस कुर्सी को, अब हम मेरा ख्याल है कि शायद किसी और ने आकर बैठना हो, हम इसको अब छोड़ेंगे। और सामने उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आपने पसंद किया होगा, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले हफ्ते में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
0: ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगरान हम सबका।

0: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
1: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07809 568 233 or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
2: लो जी सुनो जी आई गए खान कैटरिंग वाले खान कैटरिंग राधरम जिन्होंने मजेदार खाने ना कोई जवाब है नहीं एक बारी अजमाई के तको शादी ब्याह सालगिरह मानिया मेहंदी और दिगर तकरीबात आस्ता एक महंगाई ने दौर विच सस्ता ता मजेदार खाना आर्डर पर बनवाई सकने हो एक और भी गल बुझो खान कैटरिंग राधरम वाले पूरे साउथ यॉर्कशायर विच कैटरिंग नी डिलीवरी भी करने आर्डर निका होया या बड़ा ऑलवेज वेलकम खाने ने आर्डर वास्ता भाई इफ्तिखार की फोन करो या व्हाट्सएप पर राबता करो 07931737547
3: या 07784850934.
4: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11am till 2pm. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.
5: जहाँ दिल मिलते हैं जहाँ बातें बनते हैं हर राह की मंजिल
6: जहाँ बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम दिल से आपके साथ
7: लिंक एफएम शेफील्ड

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ,
1: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
2: Mizzier Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, mizziersolicitors.co.uk. Mizzier Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0330571009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have

आपका जूता देखा, बहुत हसीन है। इसे अपने पैरों में मत डालिएगा, मैला हो जाएगा। रुमाल देते हैं, ये पड़ा और सुना था। प्रिय जूता, लगता है प्यार में आपके यहाँ जूता लेने का रिवाज है। दिल चुराने का अच्छा अंदाज है।

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब

0: listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0330571009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects

0: interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: सुनिए सुनिए सुनिए, पर्ल बेकर्स ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी। गुलाब जामुन, लड्डू, रसमलाई। सैंडविच, चिकन पनीर, दही बल्ले।